0: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ, शनिवार शाम 7 बजे मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
1: Kia ora, I'm Raina, and I'll be your host bringing you a massive dose of Kiwi Heavy music. Tune into the NMIT Contemporary Music Hour on Fresh FM every second Tuesday with fresh content every month. Together we will be exploring the raw talent of the New Zealand metal scene, looking at what influences us and occasionally sitting down with local artists and special guests for an insider look at the craft. So crank the volume and join the conversation for the NMIT Contemporary Music Hour every second Tuesday at 7 p.m.